0: पन्ना सत्तरी र शून्य तिरसठी चार एकचालिस दुई सय अडसठी।
1: स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी
0: अनुरोधक वालिङ साना सहरी खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था वालिङ स्याङ्जा।